कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कदे कदे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

करके वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की रात है, तू क्यों उदास है।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, शान रह जाए

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, ना पैसे का लफड़ा जहाँ, ये तो दुनिया है जो पार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ, बचताना ना

0: ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷ ಸಮಾಗಮ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಸಂದರ್ಶನ, ಯಕ್ಷಲೋಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಹೂವಿನ ಕೋಲು ಹಾಗೂ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಮಾತು, ಕಲೆ ಕಾವ್ಯದ ದರ್ಶನ, ಮುದ್ರಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರಸಾರ.
1: ರೇಡಿಯೋ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಸಮಾಗಮ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂತಾಯಿರಿ ರೇಡಿಯೋ ಕುಂದಾಪುರ 89.6 FM.
2: बधाई है, बधाई है,
3: बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है घटा बरस जा।

मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मे

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।

मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मे